क्यान्सी राम्रो बस है, माया नमार ल, म चाँडै लिन आउँछु नि ल तिमीलाई।

पढ्नु जानु छैन। ल आमालाई खाजा लैदे। ठ्याक्कै उसको बाले जस्तो टाउका रुमाल बाने।

0: Ben Nurhan'a baba kız tanınca
1: taktikte tanıştım. Taktikte çirkinli sansele naktari. Biz baba şimdi kadın la kapar mıydı kapar? Çirkin bir tarafı normal bana hadi. Yine bana çoğu sapma kendileri bana. दिल्ली जाना चाहिए तो ठुलो क्या मैं सबको ने तो सकते उतारने सब एक प्यार मारे नाचने गाँव ना मेरे पसी हुए के गाँव मेरे का सब वे मार से बनाएगा रात मुझे क्या मिले तेरी बाबा देगा ता

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले साँझ 5 बज्यो। हेलो,

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 6 बज्यो

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले रात को 9 बजे